महान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री शिवानंद जी की जय, गुरुदेव की जय। द नेक्स्ट भजन विल बी हुआ गुरुदेव का दर्शन मिलाना हो तो ऐसा हो। I've met and I got the darshan of Gurudev. What a blessing this is. The highest thing that someone can get in life. Sridip Narayan Bhagwan ki jai.

0: ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीत परंपरा की जय देवेश्वर महादेव की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय सद्गुरु स्वामी मध्वानंद जी गुरु भगवान की जय विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय
1: सुनोरी साजनी मारो लागियो पीवा सनेवा भाग्य दान्या मेरा मारी बाहि गुरुदेवा. In this bhajan, Sri Mahaprabhuji is saying, listen, my dear friend, I am in love with God. To my great happiness, Gurudev takes my hand and leads me across the ocean.

की, माधव कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। इन आवर बॉडी देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। वी हैव गॉट फाइव डिफरेंट बॉडीज, सम कॉल्स देम और इन वेदांता दे कॉल देम कोशस। कोशस हैव थ्री मीनिंग्स। फर्स्ट इन संस्कृत वी से द कोशस, द फैकल्टीज, द डिविजन्स, द चैम्बर्स। इन इंग्लिश दे कॉल डिफरेंट चैम्बर्स और द कवर्स। बट इन जूइश रिलीजन कोशास हैव डिफरेंट मीनिंग। यू नो दिस, ए रियल जूइश पर्सन ईट्स ओनली

Then Sadhu said, I will not eat your food. I will not eat your food. वो डाकू कहता है कि महाराज भूख लगी है, भोजन करना है कि हाँ भैया भूख लगी है, भोजन करना है, लेकिन तुम कौन हो? वो सत्य बोला कि मैं एक डाकू हूं। तो बोला कि ऐसे पापी के हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। I don't eat the food from such a sinner's hands. If I do, my intellect, my buddhi will be confused, lost, polluted. But he said, but you have to eat today. Master said, no, I will not eat. He said, okay, went away. But inside his, to make his sankalpa, in any case today, he have to eat my food. महाराज ने कहा कि हम नहीं लेंगे डाकू के हाथ का भोजन, चोर के हाथ का भोजन, खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो घोड़े पे चढ़ के चला गया डाकू, लेकिन मन ही मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो, बाबा जी को आज मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा। महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडिट वेंट टू वनर रेस्टोरेंट टू सम फार्मर हैव अ लिटिल रेस्टोरेंट ऑल्सो व्हेन दे सो द पंडित इज कमिंग अ गॉड कैन यू इमेजिन दे थॉट टूडे वॉज अ फ्राइडे एंड द कैट वॉज क्रॉसिंग द वे ही केम डाउन दे सेड यस सर गुड मॉर्निंग सर He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes, sir, we will do. But here is the money. They said, no, boy, we don't need money. We will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money. Next time I will not give. But now, today I give you money. कोई छोटा होटल था वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए। अरे वो राक्षस कटवाई गयो, घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले। तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे। क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे। जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस। वेल दे वेंट, दे टुक द फूड एंड दे वेंट टू बाबा जी। बाबा जी सो सम पर्सन इज कमिंग विद द फूड। आओ भक्त, कम वेलकम भक्ता, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड, आई हैव ए लिटिल रेस्टोरेंट। All right. Prabhu, would you accept my food? He said, yes. Tum kaun ho? Ki main chota mazdoor hoon, restaurant hai. Achha. Prabhu, hum aapke liye kuch prasad bhojan laaye, khaiye, khilao beta, kha liya. While eating, his buddhi changed. Now, if you drink slowly, slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey, after half glass, you feel here zzzz, the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए।
अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटी अंडर द ट्री सो मेनी ईयर्स नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम देयर वॉज ए ब्यूटिफुल स्मॉल शिवा टेम्पल नियर द विलेज, वेरी नियर क्लोज। He asked the Pandit Pujari if there is a room. They said, yes, there is one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the Pandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue of gold. Gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep and 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. अरे ओ बाबा जी गांव के अंदर आए, देखा कि शंकर का मंदिर, पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है, कि ये कमरा है साधुओं के लिए, वहां रुक गया। शाम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं, कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा, टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। ही रेंग द बेल लॉन्ग एंड द विलेज पीपल वेर रनिंग कमिंग, व्हाट हैपेंड। स्ट्रांग पीपल लाइक जसराज जी एंड प्रेमानंद जी एंड दे वेर रनिंग, केम, व्हाट हैपेंड पंडित जी, statue is stolen. Do you know anybody? I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there's no sadhu. They took the torchlight, they saw the steps running. That time was no concrete Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running.

And Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई। पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर, कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए, और कोई नहीं है। जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं। बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए। उस समय ये सीसी रोड, डामर की रोड होती नहीं थी। किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर जवान लोग दौड़े। जाते जाते 4 बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया क्या? नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, गाते हो कि नहीं?

0: भाव।
1: उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहां जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी, हा तपस्या आती पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपेंड, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। डॉन केम एंड दैट बाबाजी लुक बिहाइंड, दे आर रनिंग सम बॉडी बिल्डर्स। नाउ व्हाट टू डू, इफ आई विल टेल, बाबाजी इज थिंकिंग that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours, after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always

he was protected. But now this sadhu begins to think, Lord Shiva, why this vrittis? Such a thought came in mind to steal, take away this gold. He closed eyes and Shiva said, my dear, the food of the thief. Oh my God. He went back to that restaurant and called that man, why did you bring me the eating? And he told the whole stories. Then he said, thank you, Lord. पापी का चोर का अनाज खाने से चोर बुद्धि हो जाती है. To eat something from the sinners or the thieves, your vrittis, your thoughts and feelings will become like a sinner or the thief. जब महाराज को ज्ञान हुआ, महाराज ने विचार किया और गए जाकर के उसी सज्जन को कहा कि भाई भोजन क्यों कराया. तब उसने कहा कि डाकू ने हमें कहा और डाकू ने हमें पैसे भी दिए, हम नहीं चाहते थे लेकिन पैसे दिए. तब कहा कि एक चोर का अनाज दाना खाने से चोर बुद्धि हो जाती है. दैट वॉज ए बिग लेसन फॉर हिम. सिमिलरली देयर फॉर द योगीज द महात्मास आएगा अन्न वैसा रहेगा मन. सात्विक फूड. डोंट थिंक दैट व्हाट यू गॉट ऑन योर टेबल यू विल ईट. यू शुड थिंक फ्रॉम वेयर योर फूड केम, हाउ योर फूड केम. मे बी इट इज ए सात्विक फूड बट मे बी इट इज टेकन अवे फ्रॉम समवन. रिमेन हंग्री एंड दे गेव यू द ईटिंग. That food is not good for you. Know this all, we don't need any more food. Therefore, great people said, before eating, offer to the divine. Now, again, there's a difference in the prayer for eating. In Hinduism, in Vedic culture, in the Upanishads,

Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, to tumhari buddhi brisht ho jayegi. इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है. मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा. हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम. हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं. उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है. एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता तो. तीन चार बार गुरुजी फरमाए बोला, तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान. तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा. महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है. तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा. तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा. तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ. दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी. मैं क्यों, कि महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया अनाहत से, आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो. मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप. बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी. तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था और हम लोग तो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है. वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच ही नहीं रहा है. खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए. अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो. इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे. लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा. अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है. जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा. इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया. मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया. तो डॉक्टर शांति विल सिंग नाउ दिस भजन. प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर सी. दीप नारायण भगवान की. तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा. टुमारो लेट्स कम टू द
प्राणमय कोशा, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विदिन दिस फाइव इज द जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड। देन दिस रेडियंस, द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड देन यू आर बियॉन्ड दिस ऑल मेटेरियल वाइब्रेशंस, फ्रॉम यू इज ओनली डिवाइन रेडियंस इज कमिंग, एंड एनीवन हु कम्स क्लोजर सिट्स राउंड यू, गो राउंड द टेम्पल, यू आर इन दिस अबव एंड इनसाइड। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की।

0: ओम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयनंद पुरी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

देवादिदेव देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

की जय। श्रीदेश महादेव की जय। हिंदू राम समरथ सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। आज की आनंद की जय।

शिशुतवेश परमदेव की जय। इंदुराम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरंजी भगवान की जय। विश्वगुरु महामदलेश्वर स्वामी महेश्वर नंशी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। गजानंद मूर्ति कृपा करो महाराज सत्संग में।

0: ओम बलि श्री नारायण भगवान की जय, सतगुरु देव की जय, आज के आनंद की जय,
1: सत्य सनातन धर्म
0: की जय।

0: अलग पुरी जी
1: अलग पुरी जी
0: वाद इन सती युगा
1: आत्रे पोस्ट आत्रे इतन सती युगा
0: इट इज मिलियन ऑफ इयर्स
1: सन मिलियन ऑफ डैन अपनी डैन डैन
0: टाइम ऑफ द शिवा वैसी इंकार्नेशन
1: अंतिम पुरुष शिवा सा इंकार्नेशन
0: His kingdom is now in Himalaya.
1: The God who is taking us foot in Himalaya.
0: There is a large Himalayan range.
1: With